तुम्हें नाम दिया है मैंने एक, तुम्हें शक्ल दे रहा हूं मैं अब, मासूम नजर, भोला चेहरा, हंसते हुए लब। एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

जिसकी तस्वीर निगाहों ने तस्वीर में देखे रंग गई, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का।

0: The Big Weekender. Hold tight for 4 hours of the biggest Bollywood hits.
1: All weekend long.
0: Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटेगा?
2: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
3: चार या
2: पांच?
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2

0: Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटेगा?
2: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
3: चार या
2: पांच?
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2।

0: 101.2 The Beat of Bollywood. High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Travel partner, AFC Holidays. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name, to 054-309-1062. The big check-in to Germany. Only on Big 106.2.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग Point two.

0: of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटेगा?
2: यूं ही यहीं? 4-5 दिन में?
3: चार या
2: पांच? पांच।
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2।

0: Big.
1: Yeah, check it out.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood. High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The Big Check-In is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Travel partner, AFC Holidays. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big Check-In, your name, to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany, only on Big 106.2.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लड़ना है?
2: यूँ ही यहीं 4-5 दिन में।
3: चार या
2: पाँच?
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग Big 106.2.

0: रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: मैंने ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना
1: क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

Big 106.2 पर इट्स टाइम फॉर द बिग बिंज, वो शो जो वीकेंड का आपका हार्ड अर्न टाइम बचाता है, क्योंकि हम लोग की एक आदत है, बहुत बुरी आदत है, बहुत ही नेसेसरी आदत है, बिकॉज जब वीकेंड आता है यू नीड टू रिलैक्स अ बिट, एंड रिलैक्स करने में नंबर वन चीज जो हम लोग करते हैं वी वॉच OTT सीरीज, OTT कंटेंट, राइट? लेकिन क्या देखें क्या नहीं देखें, स्पॉइल्ड फॉर चॉइस वाली बात है कि यू नो यू गेटिंग सो मेनी कॉन्फ्लिक्टिंग रिव्यूज फ्रॉम एवरीवेयर. तो एक काम करो, इस काम को आप आउटसोर्स कर दो. दैट्स व्हाट द शो इज ऑल अबाउट. आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट ओवर द नेक्स्ट 2 आवर्स ए पर्टिकुलर थिंग दैट People cannot stop talking about. Spoiler alert. आज हम बात करने वाले हैं about Waiting है, या is that show on Amazon Prime. So क्या अच्छा है क्या बुरा है, all that much more coming up right here on the Big Binge on Big 106.2, the beat of Bollywood.

बिग 106.2 पर दिस इज द बिग बिंज विद मी सिड एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट Amazon Prime का लेटेस्ट शो इट्स कॉल्ड वेटिंग है। नाउ कभी भी अगर आपने लाइफ में, और ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी नहीं किया होगा ये, कि इंडियन रेलवे की तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश की, आप समझ जाएंगे द हॉरर एट द सेंटर ऑफ दिस शो। वेटिंग है फॉलो करता है दो लोगों को ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ मैसिव रेलवे टिकटिंग स्कैम। दिव्येंदु प्लेज सुगम मिश्रा जो कि एक यंग रेलवे कॉप है, इज ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन रेलवेज। जहां पर भुवन अरोरा ऑन द अदर हैंड ही प्लेज हमजा जो कि स्मार्ट यंग हैकर है हु डिस्कवर्स अ वे टू मैनिपुलेट द बुकिंग सिस्टम। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट यार, मतलब जो टिकट बुकिंग सिस्टम होती है, मोस्ट थिंग्स आर ऑन एन ऑनलाइन डेटाबेस, और इसको अगर आपने हैक कर दिया देन you're pretty much through, that's your key to making a lot of money, right? That's what Hamza is looking for. Now, what starts with one confirmed train ticket slowly becomes a nationwide racket. That's what the show is all about. 7 episodes hain, bahut sara Bihari flavor. If you love that, you're going to love this show. Humor hai, cops hain, touts hai, technology hai, and honestly, jiska premise hai, it is very, very clever. Lekin, achha premise se kya hota hai? Does it have enough legs to sustain 7 episodes? That is the question. The good things, the bad things, and finally the verdict ke waiting hai, dekhein ya skip karein, all that and much more coming up on The Big Binge with me, Sid.

चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू है गौन, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है कहां को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी।

Big 106.2 पर this is the big binge with me Sid and we're talking about waiting है ये Amazon Prime की latest 7-part series है. It's time to talk about all the good things about the show. What I really liked about the show is the fact that इसकी जो दुनिया है वो बहुत ही ज़्यादा familiar है, बहुत relatable है. And जब ऐसा होता है, it is a massive tick at least for me in the right box, right? किसी ने भी और किसने नहीं किसी स्क्रीन को स्टेयर किया है जिसपे WL73 लिखा हुआ है. इंडियन रेलवे टिकट की दुनिया में अगर आपने ऐसा किया है, वेट लिस्ट पे कभी आप गए हैं, तो आप इंस्टेंटली समझ जाएंगे व्हाई पीपल वुड पे एनीथिंग फॉर अ कंफर्म्ड सीट, राइट? दैट्स व्हाट द शो इज ऑल अबाउट. दिव्येंदु इज वेरी लाइकेबल एज सुगम, स्लाइटली नाइव, थोड़े से ऑकवर्ड, एंड ही इज डिटर्मिंड टू प्रूव हिमसेल्फ. किसी भी कॉर्पोरेट दुनिया की तरह इंडियन रेलवे के सिस्टम में वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, विच इज वेरी वेरी लाइकेबल. ऑल्सो भुवन अरोरा प्लेज हमजा, इक्वली अच्छी परफॉर्मेंस है, एंड ही इज नॉट सम ईविल मास्टर माइंड. वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट ब्राइट बंदा है जो कि सिस्टम का एक लूप होल डिस्कवर करता है, एंड देन ये भी डिस्कवर करता है कि ये जो लूप होल उसने डिस्कवर किया है वो कितनी बड़ी डिस्कवरी है, हाउ वैल्यूएबल इट कुड बी, हाउ मच मनी इट कुड अर्न हिम. सपोर्टिंग कास्ट इज एब्सोल्युटली एक्सेलेंट. कुमुद मिश्रा, सुनीता राजवर, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमर, देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशन. इट नेवर बिकम्स दिस वेरी ड्राई साइबर क्राइम का प्रोसीजरल, राइट? सो कॉमेडी है, इमोशन है, सस्पेंस है, टू कीप द जर्नी एंटरटेनिंग. लेकिन हाँ, कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं शो के बारे में. कमिंग अप राइट हियर ऑन द बिग बिंज विद मी सिड.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is the Big Binge only on Big 106.2. The beat of

Big 106.2 but this is the Big Binge with me, Sid, and we're talking about Waiting Hai, Amazon Prime ki 7-part series. It's now time to talk about the not so good things about the show. According to me, is the disclaimer, star conditions apply. Now, mere hisab se, problem with Waiting Hai is ki iska jo idea hai na, it sometimes becomes better than the entire series. Kitni baar aapne ye dekha hai kisi series ke saath, yaar jo aapne vaada kiya tha na, उस वादे पे आप खड़े नहीं उतरे हो. ये काफी बार होता है इस शो के साथ. पहले कुछ एपिसोड्स दे वेरी फन क्योंकि डिस्कवर कर रहे होते हैं कि यार ये जो रेलवे सिस्टम के स्कैम है ये कैसे काम, हाउ डू दे एक्चुअली वर्क. दोनों साइड्स जो हैं दे स्लोली मूव टुवर्ड्स ईच अदर, सो इट्स क्वाइट फन. लेकिन कहीं शो के बीच में ना उसका मोमेंटम जो है वो लूज होने लगता है. कुछ ज्यादा ही साइड ट्रैक्स हैं. साइड ट्रैक्स आर गुड लेकिन जरूरत से ज्यादा, देन इट स्टार्ट्स फीलिंग लाइक अ फैमिली ड्रामा. एंड देन व्हेन देयर इज फैमिली ड्रामा, वो एकता कपूर टाइप का कहीं देखा देखा सा शो लगता है. इन्वेस्टिगेशन भी जो है डजंट ऑलवेज फील एज टेंस एज इट कुड हैव बीन. एंड फॉर अ शो दैट्स बीन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे टिकट स्कैम्स, एक्सपेक्टेशंस भी आपकी हाई होती हैं कि यार स्टेक्स हाई होंगे, इट्स गोना गेट यू नो कीप गेटिंग बिगर. लेकिन ऐसा होता नहीं है. ओकेजनली इट फील्स strangely very small, and by the time aap final episodes mein pahunchte ho, the payoff is decent. Aisa nahi kahunga ki kharab payoff hai lekin utna explosive nahi jitna ki hum expect kar rahe the. So acha idea, great idea I'd say, badhiya performances, lekin it could definitely have been tighter. To bhai gyanbaji bahut ho gayi, ab batao ki mudde ki baat kya hai. Stream it or skip it. Waiting Hai dekhe ki nahi dekhe is weekend par, coming up right here on the Big Binge with me, Sid.

Big 106.2 पर this is the Big Binge with me Sid. It's now verdict time. We're talking about waiting है Amazon Prime का ये 7-part show. इसको देखें कि नहीं देखें, stream it और skip it. बहुत ज़्यादा विचार विमर्श के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं दैट यू शुड एक्चुअली स्ट्रीम इट. यू नो, क्योंकि कभी क्या होता है ना कि बड़ी मुश्किल से अच्छा आइडिया मिलता है, हाँ, और उस अच्छे आइडिया की वजह से आपको इस शो को देखना चाहिए, नॉट बिकॉज इट्स सम मास्टरपीस. देखो, क्या एक्सपेक्टेशन को थोड़ा लो करोगे तो अच्छा रहेगा आपका एक्सपीरियंस. हाँ, बेसिक आइडिया जेन्युइनली फ्रेश है. वर्ल्ड फील्स वेरी वेरी इंडियन, वेरी फेमिलियर. एंड दिव्येंदु और भुवन अरोरा का जो परफॉर्मेंस है, दे मेक दिस 7 episodes वेरी ईजी टू स्टे विद. आपका एक भी बार मन नहीं करेगा कि मैं यू नो फ्लिप कर लूँ या बीच में से शो को छोड़ दूँ. हाँ, कुछ जगहों पर द शो ड्रैग्स. एंडिंग कुड हैव बीन मच मच बेटर, इट कुड हैव लैंडेड हार्डर, लेकिन काफ़ी ह्यूमर है, इनफ सस्पेंस इन द शो, एंड कैरेक्टर्स भी अच्छे हैं टू मेक योर राइड टोटली वर्थ वाइल. अनलाइक जो बाकी गैंगस्टर शोज होते हैं, मर्डर मिस्ट्रीज होती हैं, ये जो शो है इट इज बिल्ट अराउंड समथिंग दैट ऑलमोस्ट एवरी इंडियन अंडरस्टैंड्स. कन्फर्म ट्रेन टिकट का डेस्परेशन. सो इफ यू वॉन्ट समथिंग लाइट, डिफरेंट, ईजी टू बिंज दिस वीकेंड, आई वुड रिकमेंड वेटिंग है. सो द बिग बिंज वर्डिक्ट इज स्ट्रीम इट. दिस इज द बिग बिंज विद मी सिड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

39 कुणाल खेमू ने इसे लिखा है, डायरेक्ट करा है, प्रोड्यूस किया है, एंड इज आल्सो एक्टिंग. फैंटास्टिक रिव्यूज. इनफैक्ट आई सॉ द मूवी टोटली इज अ वाइब दिस वीक ऑन नंबर 39. अलग है स्टाइल, अलग है हाइप, मेरी अलग है वाइब, अलग है लाइफ, अलग है स्टाइल, अलग है. कुणाल खेमू का स्टाइल इज वेरी वेरी डिफरेंट, बट उनकी पहली मूवी मडगांव एक्सप्रेस वाज फैंटास्टिक एंड सो इज वाइब. कुणाल खेमू विल गिव अस सम मूवीज टू रिमेंबर. सो इफ यू हैव नॉट मेड एनी प्लान्स दिस वीकेंड, यू कैन गो एंड वॉच वाइब. आई गारंटी यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन. नंबर 40.

0: 2025 में गाना रिलीज हुआ था, स्टिल अ पार्ट ऑफ आवर टॉप 40 एंड अर्ज किया है कोक स्टूडियो भारत के लिए क्रिएट किया था अनुप जैन ने, ओवर 800 मिलियन स्ट्रीम्स मिली है इस गाने को दिस वीक ऑन नंबर 33।
1: दिस इज द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन,
2: ऑल द म्यूजिक आई लव,
1: द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड, बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। High speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. Germany. Presenting sponsor Danube Properties, title sponsor Papa John's, associate sponsors Ford and Sharaf DG, ethnic partner Bavri and Kora, travel partner AFC Holidays. Ready to board? Just send us a WhatsApp, big check-in, your name to 054-309-1062. The big check-in to Germany, only on Big 106.2. The Big Bollywood Countdown, the part of the big weekend, Big 106.2, the beat of Bollywood. Number 34.

0: श्रेया घोषाल रोमी की आवाज। इसी के साथ ऑन नंबर 25 एक और गाना जो ब्यूटिफुली कोरियोग्राफ किया है, लिखा गया है रोचक कोहली एंड आदित्य रिखारी विद दिस वन फ्रॉम पति पत्नी और वो दो।
1: जिन्नी सोनी लग दी है मनु किसे हो ना लगे।
0: दिस वीक ऑन नंबर 25।
2: नंबर 26।

you the biggest hits of the week with the Big Bollywood Countdown. And Mansi, we've got a brand new entry. If you love Rashri films, if you're a fan of Maine Pyar Kiya, Hum Aapke Hain Kaun, Viva, Hum Saath Saath Hain, you're in for a treat. Suraj Barjatia is making a return after his national award winning movie Uchai. मैं बात कर रही हूँ ये प्रेम मोलिया की. द मूवी इज ऑल सेट टू हिट द थिएटर्स ऑन द 27th ऑफ नवंबर. आयुष्मान खुराना साथ में शर्वरी एंड द पहला गाना ब्रिंग्स हिमेश रेशमिया एज अ म्यूजिक डायरेक्टर बैक इनटू आवर लाइव्स, प्लेइंग यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम राइट हियर ऑन द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन.

0: म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने, गाया भी हिमेश रेशमिया, श्रेया घोषाल एंड निहाल ने है, हु इज अ फॉर्मर इंडियन आइडल कंटेस्टेंट एंड टिपिकल राष्ट्रीय वाली फील्स है इस गाने में. विल टेक यू बैक टू हम आपके हैं कौन, प्रेम रतन धन पायो डेज, इस हफ्ते ऑन नंबर 23.
1: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The Beat of Bollywood. The Big Bollywood Countdown. Big 106.2. The Beat of Bollywood. Number 23.

शाश्वत सचदेव इरशाद कामिल के लिरिक्स अरिजीत सिंह की आवाज फ्रॉम द बिगेस्ट मूवी ऑफ 2026 धुरंधर द रिवेंज से Playing in the top 40 biggest hits of the week. मैं हूँ मानसी with a big Bollywood countdown. On number 20, A.R. Rahman, Imtiaz Ali, Vedang Raina ki awaaz. I love the movie, but I don't have the courage to re-watch this movie anytime soon because मैं बहुत रोई थी ये movie देखने के बाद. अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, it's one of the bestest work of Naseer Sahab, Imtiaz Ali, Diljit, Vedang Raina, Sharvari. मतलब casting कमाल है, story कमाल है, and गाने भी कमाल है. La la la.

0: धुरंधर 2 के एटलीस्ट 6 गाने ऑफकोर्स हमारी प्लेलिस्ट में होते हैं व्हेन आई टॉक अबाउट द टॉप 40, बिकॉज इतनी धमाकेदार एल्बम है ये. इस हफ्ते भी ऑन नंबर 19 ज्योति न्यूरा, जैस्मिन सैंडलेस, एंड ऑफकोर्स ऑन नंबर 18. मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपका वक्त आता है तो छप्पड़ फाड़ के आता है, एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज रवि किशन. ही इज एवरीवेयर, फ्रॉम मीम्स टू मूवीज टू OTT शोज टू सॉन्ग्स. The song is called Money Follows this week on number 18.
1: This is the Big Bollywood Countdown.
2: All the music I love.
1: The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 20.

0: 18.
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया, सुनो। नाम या दाम?
2: नाम।
3: Money follows, my brother.

0: ज्यादा पगला दूंगा पूरे देश को।
1: द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन, द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड, बिग 106.2।

0: जो डर गया समझो मर गया, इनका सामना करो, तुम आगे बढ़ती रहो और इन्हें
1: नंबर 15

0: On number 10, Tera Mera Rishta continues from Awarapan 2, which is Imran Hashmi ke career ki sabse badi solo hit. Playing in the top 40 biggest hits of the week, Mansi, this is the big thrill and you're in for a treat. If you're a fellow millennial, this news is going to make you very, very happy. We got very excited when we saw Imran Hashmi. Our Imran Hashmi is coming back with Awarapan 2. Now we'll get to see him again on the 27th of November this year with Gunmaster G9. But wait for it, the movie brings back the iconic trio. Imran Hashmi, director Aditya Dutt, jinhone banayi thi Ash. बनाया आपने एंड म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया आफ्टर टू डेकेड्स आई थिंक 2005 में इनकी म्यूजिकल हिट टुगेदर थी आशिक बनाया आपने एंड नाउ इन 2026 दे आर बैक विद गन मास्टर G9 आई थिंक इट्स प्योर नॉस्टैल्जिया फॉर अस मिलेनियल्स इमरान हाशमी हिमेश रेशमिया वाज अ मैच मेड इन हेवन एंड आई एम सो हैप्पी दे आर बैक इमरान हाशमी ऑफकोर्स इज प्लेइंग ईश्वर देयर इज जिनेलिया देशमुख अपार शक्ति खुराना ऑल्सो पार्ट ऑफ द मूवी फिलहाल पहला गाना इस मूवी का रिलीज हो चुका है ओए होए सीधा नंबर 8 पे ऑफ कोर्स इट इज हिमेश एंड इमरान हाशमी टुगेदर हिमेश के साथ असीस कौर एंड ऑफ कोर्स द सॉन्ग विल टेक अस बैक टू 2005-2006 जब हम आशिक बनाया आपने छुप छुप के देखा करते थे
1: द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: The Big Bollywood Countdown. Big 106.2. The Beat of Bollywood. Number 9.

0: Countdown. इस हफ्ते के 40 सबसे धमाकेदार हिट्स.
1: Countdown.
2: Here we go.
0: सिर्फ बिग 106.2 बीट ऑफ बॉलीवुड पर.

0: जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ।
1: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। This is the Big Recommends and in this show, in this hour बात करने वाली हूँ मैं matcha dishes के बारे में, जो शुरुआत हुई थी सिर्फ एक matcha drink से, उसके बहुत सारे flavors आ गए, लेकिन करते करते matcha हमारे household dishes में पहुँच चुकी है। लेकिन मैं तो तब भी बाहर कैफे से ही खा के आई हूँ। Recommend करने वाली हूँ आप

को 2 से 3 माचा डिशेस यू शुड नॉट मिस आउट। मुझे माचा माचा की सुनाई दे रहा है। सोनू निगम का ट्रैक सॉन्ग है मारिया मारिया कमिंग योर वे। अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

श्रीधर का ट्रैक सॉन्ग का नाम है चोर बाजारी। बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, दिस इज द बिग रेकमेंड्स एंड मैं बात कर रही हूँ माचा जो फिलहाल हैज लेफ्ट द कप, क्योंकि कप से बाहर निकलकर वो बहुत और वायरल डिशेस में कन्वर्ट हो चुका है। आई हैव हैड माचा आइसक्रीम, माचा जेलेटो, माचा चीज केक, तिरामिसू, कुकीज, ब्राउनीज, क्रॉसों, डोनट्स, वॉफल्स, द लिस्ट इज एंडलेस। लेकिन ऐसी दो चीजें जो मैंने माचा की ट्राई करी थी विच इज नॉट अ ड्रिंक, ओ गॉड, हार गई भाई मैं। अब मैं कैफे में जाके माचा लाटे नहीं ऑर्डर करती हूँ, अब मैं ये वाली डिशेस ऑर्डर करती हूँ। कौन कौन सी ये बताती हूँ अब बिट। अंटिल देन कीप इट लॉक्स टू बिग 106.2, दिस इज द बिग रेकमेंड्स।

एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यार इतनी अच्छी होगी. उसके बाद मैंने खाया माचा क्रॉसो, एंड क्योंकि मुझे कुनाफा ऑर्डर करना था, कुनाफा क्रॉसो, लेकिन गलती से माचा क्रॉसो ऑर्डर हो गया बिकॉज ऑफ कोर्स द ग्रीन ग्रीन कलर. बट आई एम हैप्पी कि वो गलती हुई, ताकि मुझे मैंने टेस्ट किया कि माचा क्रॉसो एक्चुअली कैसा होता होगा यार. खाने की बात तो यही हुआ यार. सो आई विल हाईली रिकमेंड माचा क्रॉसो, माचा तिरामिसू एंड ऑफ कोर्स द आइसक्रीम. अगर कोई और डिश ट्राई करी है आपने माचा की, डू लेट मी नो. मैसेज करके 0543091062 व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर आप डीएम भी कर सकते हो 106.2 बिग एफएम के पेज पर. अंटिल देन, कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ।
1: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Big 106.2 में मैं हूँ अवनी आपके साथ, दिस इज द बिग रेकमेंड्स। एंड मुझसे कुछ केक बोल दो तो नहीं, हमें बर्थडे पे ये नहीं चाहिए, हमें फ्रूट केक चाहिए या फिर सम अदर फ्लेवर, लेकिन चॉकलेट इज दैट वन बार जो बहुत ऊपर जा सकती है, जिसके लेवल 1, 2, 3, 4,000 तक हैं, लेकिन देन देयर इज वन बार ऑफ चॉकलेट, वी कॉल इट मटिल्डा केक। एक बार फिर से ये वायरल हो रहा है, दुबई मटिल्डा केक, लेकिन विद अ डिफरेंट वर्जन, एंड एक्चुअली ये आपको और हैप्पी कर देगा, सो आई विल कॉल इट अ हैप्पियर वर्जन। कौन सा वर्जन है, कितने का मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, बताती हूँ इन अ बिट। अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

ये स्कूपेबल मटिल्डा केक के लिए आना कहाँ है? बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग रेकमेंड्स एंड मटिल्डा केक का एक हैप्पियर वर्जन आ चुका है विच इज कॉल्ड द स्कूपेबल मटिल्डा केक. अब इसमें होता क्या क्या है? जेनरस अमाउंट ऑफ गुई केक, रिच रॉयल, उसके साथ दे सर्व इट विद द सॉफ्ट सर्व ऑफ वनीला आइसक्रीम, उसके साथ चॉकलेट फ्लेक्स, द चॉकलेट सिरप. सो मोर चॉकलेट, मोर गुई नेचर एंड ऑफकोर्स वी आर हैप्पियर. लेकिन एक स्कूप लेने के बाद ही आपके टेस्ट बड्स यही बोलते हैं यार. And having said that, if you love chocolate things, if you love chocolate as a flavor, this scoopable Matilda cake is available in just 29 dirhams. कहाँ पर है बताती हूँ in a bit. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: 6 पॉइंट पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग रिकमेंड्स. बात कर रही थी मैं आपसे स्कूपेबल मटिल्डा केक के बारे में, विच इज अवेलेबल इन 29 धर्म्स. ट्रेंड पर है. एंड क्योंकि मटिल्डा केक में आपको सिर्फ चॉकलेट केक, गुई रिच चॉकलेट फ्लेवर मिलता है, बट इन दिस यू गेट अ सॉफ्ट सो वनीला, उसके साथ साथ चॉकलेट फ्लेक्स, उसके ऊपर चॉकलेट सिरप एंड जेनरस अमाउंट ऑफ मटिल्डा केक. इट्स स्कूपेबल बिकॉज यू ईट इट विद अ स्पून. एंड जस्ट नॉट दैट, ये 29 धर्म्स का आपको मिलेगा कहाँ पे?
1: लड़की है कहाँ?
0: Well, जहाँ पर ये स्कूपेबल मटिल्डा केक मिलेगा वहीं पर ये लड़की भी मिलेगी. इट्स अवेलेबल सिटी सेंटर मिर्दव, सिटी सेंटर अलजाइया एंड द दुबई मॉल. तीन आउटलेट्स पर मिल जाएगा आपको इन जस्ट 29 धर्म्स. इट्स ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड देख के रील्स लगता है यार कि अभी ही मेरी प्लेट में आ जाए. आई हैव ट्राइड दैट एंड आई एम टेलिंग यू इट्स वर्थ दैट स्कूप. गोना टॉक मोर अबाउट द ट्रेंडिंग थिंग्स हैपनिंग इन दुबई. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ।
1: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends with Avni, only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। दिस इज द बिग रेकमेंड्स लास्ट आवर ऑफ माई शो। एंड जब भी मुझे यार कोई मेरे बालों के लिए कॉम्प्लीमेंट करता है ना कि ओ माई गॉड यू हैव गॉट सच नाइस कर्ली हेयर, इट्स सो फ्लफी, फ्रिजी भी नहीं है, मुझे उनको बताना होता है यार कि आपको पता है कितनी मेहनत लगती है, कितना मेंटेनेंस लगता है इन कर्ली हेयर के पीछे। एंड जस्ट नॉट दैट, देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ कर्ली हेयर। कुछ के वेवी होते हैं, कुछ के बिग कर्ल्स होते हैं, सिर्फ यू नो नीचे की लेंथ पे कर्ल्स पड़ते हैं। एंड इट्स जस्ट ब्यूटिफुल इवन इफ यू मेंटेन इट, बट इफ यू डोंट It gets frizzy and वो सामने मुंह पे आपके मुंह पे बोल देंगे। बल्लब आपके बालों की स्टेटमेंट बदलने वाली है। दुबई हैज गॉट इट्स फर्स्ट एवर कर्ली हेयर फेस्टिवल, कहां पर हो रहा है बताने लगी हूं मैं आपको। अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग रेकमेंड्स एंड बात कर रही थी मैं दुबई का पहला कर्ली हेयर फेस्टिवल के बारे में. दिस इज गोना स्टार्ट अक्टूबर 10 से. फैमिली फोकस्ड कर्ली हेयर फेस्टिवल है एंड ऑफकोर्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जा सकते हो. एंड बहुत टाइप के कर्ली हेयर होते हैं, कहीं के वेवी होते हैं माइनस लाइक वेवी वन, एंड बहुतों के बहुत ही स्प्रिंग वाले कर्ल्स होते हैं. बट इतने सुंदर लगते हैं, इतने फैसिनेटिंग लगते हैं, पीपल कॉम्प्लीमेंट यू, बट दे हार्डली नो अबाउट द मेंटेनेंस वी गो थ्रू. एंड यहाँ पर इस फेस्ट में वही बताया जाएगा, वही ठीक किया जाएगा. एडल्ट्स की जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है 100 धर्म से, चिल्ड्रन की 50 धर्म से. फैमिली पास भी है विच इज अराउंड 280 धर्म्स. ये दुबई इंटरनेट सिटी में होगा अक्टूबर 10, दुबई फर्स्ट एवर कर्ली हेयर फेस्टिवल दिस अक्टूबर 10. लेकिन एक बार हम वहाँ उस फेस्ट से बाहर निकले ना, ये आपने फील ना किया अगर अपने बालों की मेंटेनेंस बढ़ा लूंगी. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

इस म्यूजिक के साथ जो मेरे खुद के ड्रामेटिक इफेक्ट्स निकलते ना, दैट्स अननैचुरल। बिग 106.2 पे हूँ अवनी आपके साथ, दिस इज द बिग रेकमेंड। फिलहाल हो रहा है मेरे जाने का टाइम, लेकिन ये गाना सुनते ना मुझे एकदम नॉस्टैल्जिया हिट हुआ है। दिस इज माई चाइल्डहुड वाला गाना, मतलब कभी खुशी कभी गम वॉज माई फेवरेट फिल्म एवर। और क्योंकि मैंने ये सुन लिया, मैंने गो होम वॉच द फिल्म अगेन। एंड जितना मर्जी आप नई चीज़ें बिंज वॉच कर लो, जुनून है, लेकिन पुरानी फिल्म को 100th टाइम देखने में सुकून है यार। सो दिस वन इज़ फॉर यू, हाईली रिकमेंडेड यार, कभी खुशी कभी गम। इट्स अ 4-hour फिल्म, लेकिन वॉच इट। कल मंडे है, उससे पहले का पुश आपको मिल जाएगा। कल मिलती हूँ फिर से आपको द बिग मिक्स के साथ 1 to 5। अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।